प्रसाद तार खास कसपत का पादशाह दशमी काल भी रखी रक्षा हमने सर्व लो दी रक्षा हमने सर्व काल जी दी रक्षा हमने सर्व लो जी दी सदा रक्षा हमने बंतन बही बिगल तल महान जयते पुसो करुणा निदान जग मगध ते

0: पुस्तक संपूर्णम।
1: स्वक महला पहला आपे पांडे सा जन आपे पूर्ण एक समय एक चले रहन चले एक ने हाली पैसा

तातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना तामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पहमंग अलेखंग अपेखंग अजूनी सरूपंग सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध रूपंग

अछेदंग अभेदंग कर्मंग अकालंग अखंडंग अपंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न अभेदंग न परमंग

छह स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना सोकंग ना सागंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना परमंग ना सर्मंग ना साके ना बर्मंग ना चर्मंग ना कर्मंग ना बाके न सतरंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अच्छा।

चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं उतर परम पुराण को पार पावे, कहूं बैठ कुरान के गीत गावे, कहूं शुद्ध सेखं, कहूं ब्रह्म धर्मं, कहूं वृद्ध अवस्था, कहूं बाल कर्मं, कहूं ज्वाल स्वरूपं, जरा रहत देहं, कहूं नेह देहं, कहूं त्याग गृहं, कहूं योग भोगं, कहूं रोग रागं, कहूं रोग हर्ता, कहूं भोग त्यागं, कहूं राजसाजं, कहूं राजरीतं, कहूं परम पूर्ण प्रक्रिया, कहूं परम प्रीतं, कहूं आरबी तोर की पारसी हो, कहूं पहलवी पष्टवी संस्कृति हो, कहूं देश पाख्या, कहूं देवबानी, कहूं राज विद्या, कहूं राजतानी, कहूं मंत्र विद्या, कहूं तंत्र सारं, कहूं जंत्र रीतं, कहूं शस्त्र

कहूँ नागबानी, कहूँ गारड़ू गूड़ कथा कहानी, कहूँ अक्षरा पछरा मछरा हो, कहूँ वीर विद्या अभूतन प्रभा हो, कहूँ छैल छाला तरे छत्र धारी, कहूँ राजसाजंति राजा तिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, छेती अछय आदत वै विधाता, न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे, नमस्तंग नमस्तंग त्वस्तंग अभूते त्व प्रसाद।

कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई प्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत वर्त लटकंत जाप कई जपत

ताप सर्व जलेर थलंग धन विचरत इंद्र कुमेर पलंग अनखेत स्वरूप भेद अभ्यंग अनखंड भूत छेद अभ्यंग अनकाल अपाल दयाल स्वंग जठटी अंग मेर आकाश पुअंग

न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेग है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेघ है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेज है अपेद है न रंग है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है परमाथ है न सीत है न सोच है न क्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नरको स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैग है न पीक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अपंज है अपरम है अपूत है अछेद छेद है सदा अगंज गंज गंज है अपूत अपेक है बलि अरूप।

जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद, मित्र पालक सत्र खालक दीन दयाल मुकंद, अघाओ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरणंग पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल, सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पाम, सर्व पुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन, सर्व सिम

अनाद अद्वैग सुभूत भविक भवान अभाह अंत विहीन अनात्मा अदाग अदोख अछिद्र अछाह लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रवाह दीन दयाल दया कर श्री पात।

अंतर के चलैया चित छत्र के तरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरन के साल है। दान के दिवैया महामान के बटैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल ध्याव गुर गर दे जी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कतेक बाधा अर्भ के अर्भी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माना कंधारी कुरेसी जाना पछम के पछमी पछान निज काम है। मराठा मगेले तेरी मानसो तपस्या कर दृढ़ व तिलंगी पहचान धर्म धाम है। बांग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के मघेले वीर बांग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गाव चीन मचीन के शीस न्याव तिब्बती ते आए दुख देह को दलत है। जिन्ना तोहे त्यायो तिना पूरन प्रताप पायो सर्ब तन धाम।

जी गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्कार जो संगतां वलों बिनत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन वसना देह अरुकता बसनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

दई। धन धन लोगन के राजा, दुष्चंदाह गरीब निवाजा। अखल पवन के सिरजन हारे, दास जान मोह लेहो उबारे। कवि

माहे। ज्योतः प्रभु को त्याए हैं अंत सुरक को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है बेबिचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। दोहरा जब आयस प्रभु।

वचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहोरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठत्याय हैं

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई, माया मोह भ्रम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

0: नान जंतु पाए के संभाले सबना जिन करते एक ना किया चिंता भय कर नेता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहार स्वस्थ तिस तिद बाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख ने किया चंगे आईया लख पुन्ना परवार लख तप ऊपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता है करना किया लिखिया आवण जान
2: नान

दयाल कृपा करता साई कार करासी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनासी हुक्म ने हवे प्रवान ताक उसमें का महल पासी हसमें पहवे सो करे मनो चिंदिया सो